0: हेलो जी राहुल आज नहीं पहुंचे
1: ये राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे वो भी नहीं राहुल दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, चलो ढूंढो कभी।
1: ओह गॉड मैं अभी आया।
0: सुची सुची राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।

वैशाख 27 देखि जेठ 1 गते सम्म स्थान न्यू बुलबुले अटो सेल्स जुन्दा रोड सुर्खेत। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97670 56 813 र 97670 56 814।